कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उहने अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा वी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुज्जी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने, वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने। एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तो बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तो प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना की, ना ही मौत तो डरते सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तो ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया। उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा, उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने। संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलो ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसानां किरतियां ते गरीबां दा मसीहा। लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे ओ उच्च कोटि दा कवि, लोक युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत भरा पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जा नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों इक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी। इह तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह हुणां ने कोई तसल्ली वक्त जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओ लावारस किदां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हांजी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हू लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतो, ए मोहब्बत का पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा, आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आप सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला।

सो दोस्तों गल इदा है भाई, सोचने वाली गल ए है कि हजारा साल बीत गए ने ते 80 साल सानू आजाद होया नू भी हो गए ने। ठीक है जी, साडे च कोई बदलाव या क्रांति क्यों नहीं आई, चक्कर की है? साडे तो पिछले अगे निकल गए, रौला रप्पा बहुत सुनिया पर अंत विच ओही बाबा रामदयाल ते ओही भूरी खोती, सारे खोते पार्लीमेंट च बह गए ते साडी खोती बोर्ड थले खलोती। हां जी, बदलाव नहीं आया कोई। हुण तुसी सोचते होगे कि क्यों बदलाव नहीं आया। हां जी, साडा रहण सहण बदल गया, लफजां दे मायने बदल गए ने, साडियां चलाकियां बदल गईयां ने, असी झुग्गियां तो कोठियां ते आ गए हां, और सैकलां तो कारां तो हवाई जहाजां तक पहुंच गए हां। हुण असी चाची नूं आंटी कहिंदे हां। हां जी, ते चाची नूं आंटी कहिंदे हां, ते पानी नूं वाटर कहिंदे हां, असी फुफड़ नूं अंकल कहना शुरू करता। असी तब्दीली नहीं आई है, साडी भाषा बदल गई, लकोकतियां बदल गईयां। जदों खोतियां तो मोटरसाइकलां ते ही आ गए, साडियां नजरां ते अदावां भी बदल गईयां, हर तरह दी मशीनरी आ गई, और कंप्यूटर युग आ गया, चारे पासे बदलाव ही बदलाव है। ठीक है प्यारे भारतीयो, ये सारे आविष्कार जेड़े तुसीं गिन रहे हो, बदलाव दे जड़े ने, ये विज्ञान ते पछम दा दिता है। भारतीयो, तुहाडा तां लगभग इहदे विच जीरो योगदान है, ते जीरो कार्ड भी भारत दी है, ते जां फिर भारत दे झंडे च डंडा तुहाडा। कोई अंग्रेज सी ना, उहने वो पुछिया बाजार विच भी आ फलाना चिट्टा रंग ते ओह जापान आलियां दा हरा रंग उहनां दा वा, बसंती रंग उहनां दा वा, ते झंडे च तुहाडा किहड़ा रंग आ भारतीयो? भारतीय जिहड़ा जवाब देने लगा कहिंदा झंडे च डंडा किहदा है? साडा। हां, झंडे च डंडा तुहाडा। पहला तां तुसीं गुलाम सी, ठीक है जी, पिछले 80 सालां तों तुसां कोई अंतरराष्ट्री खोज कीती है? सिफारशी टट्टू, नकलां मारन वाले, डिग्रियां मुल लैण वाले आविष्कार की करनगे यार? एक बारी ना एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे स्टूडेंटां ने जहाज बना लिया इंडिया च, बड़ी वड्डी गल है, जहाज बना लिया, ते उहदे ते लगे ना जदों उहदी पहली फ्लाइट लैण, ते उहदे च सारे प्रोफेसर बह गए, ते प्रोफेसरां ने कहा कि अहीं पैराशूट तों बिना नहीं बहना, की पता स्टूडेंटां ने किदां दा जहाज बनाया, सारिआं ने पैराशूट पा ले, ते प्रिंसीपल अगली ते झंडे च तुहाडा किहड़ा रंग है भारतीयो? ते भारतीय जिहड़ा जवाब देण लगा कहिंदा झंडे च डंडा किहदा है? साडा। हां, झंडे च डंडा तुहाडा। पहला तां तुसीं गुलाम सी, ठीक है जी, पिछले 80 सालां तों तुसां कोई अंतरराष्ट्री खोज कीती है? सिफारशी टट्टू, नकलां मारन वाले, डिग्रियां मुल लैण वाले आविष्कार की करनगे यार? एक बारी ना एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे स्टूडेंटां ने जहाज बना लिया इंडिया च, बड़ी वड्डी गल है, जहाज बना लिया, ते उहदे ते लगे ना जदों उहदी पहली फ्लाइट लैण,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ

ना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना मैं कहती यमला पगला दीवाना हो रहा।

0: बहुत कूल
1: और एक ये जड़ा है मैं आप जी की नजर कर रही हूँ विशेष करके
0: थैंक यू जी
1: जड़ा हूं मैं सुना लगी
0: हाँ जी

0: ये गोड़ा चतुरा
1: एक पे रहना, या गोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: डांग उत्ते डेरा
1: जट कलाई बथेरा
0: तेरा डांग उत्ते डेरा
1: जट कलाई बथेरा
0: किथों लाएगा मराड़ा वाले मान के हजेरा
1: मीना संग जट तो तू कुछ मंग जट।

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोतियों ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते प्राक्ति